0: करी तबे चिका हो के इंतिरु हाँ तीन छे चीज खुरी ली करूनी ना कुल से श्वेली छुआम
1: ली
0: करूनी ना खलुम सीट से यूर